0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: Toilet Bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्य लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन
3: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ
4: होइन हामीसँग अझै आशा छ मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो
4: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 9861414199
6: यो कृष्ण सार एफएम
7: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

उपलब्ध होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

बद्ध होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: यो कृष्ण सार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागि।
3: ओहो आज दाई नै मजा लागत हो, मजा से दवाई करे ना कहतो।
4: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई ना, पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
3: ए बात तो ठीक है कहलो, साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त?
4: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाइत।
3: ए ओसिनो कला से वहाँ जाई मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
4: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेहा।
3: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ लैजिना हो?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन, वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुईत। ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ति रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुन्ना, कान दम्मा हुईना विटामिन के उपचार और परामर्श, वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल, कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुई। वाकर संगे कान कम सुनना, विटामिन के लाग कान में लगैना सस्ता व महंगा, ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए। जस्ते BTE, CIC, RIC जैसी मशीन फे वहाँ मिलत।
3: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुन से कही ता?
4: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98-84-20-697, 98-85-23-697 वो 98-014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
5: भर्ना खुल्यो।
6: होप इंटरनेशनल एकेडमी मा नया शैक्षिक सत्र का लागि कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो।
5: हजुर, कंप्यूटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल मैनेजमेंट संकाय मा नया भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं।
6: नेपालगंज मा विगत 21 वर्ष देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालय मा सुविधा सम्पन्न कंप्यूटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
5: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
6: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको।
5: होप इंटरनेशनल एकेडमी, गुणस्तरीय शिक्षा को भरपर्दो आधार।
6: होप जानकारी का लागि
5: संपर्क नंबर 081-551-462, 98-580-24-462, 98-580-20-645। ठेगाना होटल रोयल बांके को पूर्वतिर नेपालगंज बांके।
7: के त
6: तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई प्र्याक्टिकल एजुकेसनसँग जोड्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुलमा अब कक्षा 11 होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि भर्ना खुलिसकेको छ। यहाँ विद्यार्थीहरूले केवल किताबबाट मात्र होइन व्यावहारिक अभ्यास मार्फत पनि सिक्ने अवसर पाउँछन्। मोडर्न किचन प्र्याक्टिकल, हस्पिटालिटी ट्रेनिङ, स्किल्ड टिचर्स एन्ड डिसिप्लिन्ड लर्निङ एनभाइरोमेन्ट अब एकै ठाउँमा।
7: आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। त्यसैले अरुणोदयले विद्यार्थीलाई विश्व स्तरको प्र्याक्टिकल एजुकेसन प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
6: यदि तपाईँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा सफल करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस्। सिट सीमित छन्। अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुल, खजुराचार, बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-560-143 र 98-580-20-819।
8: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन, बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
6: नेपालगञ्जको बिपी चोकमा अवस्थित जीबीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञान सँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीवीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
8: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल, बिपी चोक, नेपालगञ्ज।
6: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570।
9: खुसी के खबर, खुसी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराईटी।
10: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा।
9: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे ओ और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महिनाक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
10: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महिनाक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल, बीपी चोक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 व 98-482-80-465।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: भर्ना खुल्यो।
4: होप इंटरनेशनल एकेडमी मा नया शैक्षिक सत्र का लागि कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो।
2: हजुर, कंप्यूटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल मैनेजमेंट संकाय मा नया भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु।
4: नेपालगंज मा विगत 21 वर्ष देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालय मा सुविधा सम्पन्न कंप्यूटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
3: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
4: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको
3: होप इंटरनेशनल एकेडमी, गुणस्तरीय शिक्षा को भरपर्दो आधार।
4: होप जानकारी का लागि
3: संपर्क नंबर 081-551-462, 98580-24462, 98580-2645। ठेगाना होटल रोयल बांके को पूर्वतिर नेपालगंज बांके।
1: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेक जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: सखी नमस्कार।
1: हाँ सखी नमस्कार।
0: और गर्मी के भी नमस्कार।
1: गर्मी के भी नमस्कार। हाँ। तो गर्मी के कूल कूल नमस्कार, ठंडा ठंडा नमस्कार।
0: अच्छा हाँ, हाँ तो अब कुछ हमका मिल जाए ठंडा ठंडा, इनके मारे तो हम लोग दिन रात सपना देखा जाता नहीं श्रोता की कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए। तो आप जैसे हमका लोग का कूल कूल ठंडा ठंडा नमस्कार करे हो।
1: ठंडा रहा था वो ना।
0: हाँ बस कहे से तो सदा बहार है भाई, कही दो तो अब
1: कही दो तो महसूस भी होने लगा।
0: हाँ आदमी का थोड़ा दिलासा हो जाता है।
1: दिलासा हो जाता
0: है। और वैसे भी आपका भी ठंडा ठंडा नमस्कार है और सारे श्रोता लोगन आप लोगन का भाई गरम के तरफ से। अब गरम तो है ये है अत्ता, और गरम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, अत्ता बढ़ते कि जैसे लगा था रास्ता में भी हवा में भी आग लाग है। इन में ताप गरम बढ़त जात है, तो श्रोता आप लोगन का भी ताप गरम का सोच में बदल के एकदम ठंड बयार के सोच के आप लोग नमस्कार है।
1: नमस्कार है। बीसों हाथ जोड़ के, नहीं नहीं उंगली जोड़ के, अब उंगली बीस है ना, इसकी वजह से
0: मतलब ये 20 कस के होई गवा।
1: देखो चार हाथ जोड़ के हाँ। मतलब दुई आपके होई गवा, दुई हमारे
0: होई गवा। ये बात मतलब एक कदम आगे हो आप।
1: और का
0: मतलब दसों हाथ दहा।
1: अब सोचे पे मजबूर हो जाओ ना कि अब 20 कैसे, हम उंगली के बात करें इनका।
0: अच्छा उंगली की बात।
1: हाँ उंगली के। हाँ। और चार हाथ 20 उंगली
0: ना, अत्ता हिसाब हम नहीं करे रहे ना, वैसे तो हम हो फेल हो गए मास्टरी में कि तुरंत ही आप दसों हाथ जोड़ के बीसों हाथ जोड़ के करो, तो हम सोचे हत्ता हाथ कहाँ से आवा, रावण के 10 खोपड़ी रहे तो इमें हाथ के बात कहाँ से
1: खाली आएगा? आपका चौकाए वाला बात करें, पहले 20 हाथ करें कि आप चौक जाओ, फिर बाद में हम बताएं ना कि
0: कोई बात नहीं सकी। जितना चौकाए हो मतलब दिमाग खुल गवा है, गर्म से इतना परेशान है हम लोग कि कोई काम करे मन नहीं लागत है एक तो है नी, और फिर कोई काम करे चलो तो भूल भी जाओ
1: तो दिमाग बंद रहा है।
0: हाँ बंद रहा है, लेकिन 10 हाथ के नाम सुन के 20 हाथ नाम सुन के दिमाग खुल गवा है। तो आप लोग थोड़ी देर सोचा जाते है नी श्रोता, तो स्वागत है आप लोगन का कार्यक्रम घर अंगना में। आप लोग जाना जाते कि हम दोनों सखी, हमारे सखी चंदा और हम
1: और हमार सखी संध्या।
0: हाँ आप लोग के समझ आई गवागा है, तो रेडियो ऐसे कृष्ण सार रेडियो सुनते रहा जाए और 3 बजे तक हमारे लोग के कार्यक्रम में साथ देते रहा जाए। और साथ ही कोई भी
1: क्या हुआ सखी, कोई भी लो ठीक है, तो पहले एक गाना सुना जाए के बाद मतलब आप सोचा करो, सोच के बताओ फिर।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: तो सखी,
1: हाँ सखी,
0: हम लोग का कहते कहते हम लोग हेराए गए,
1: आप जो है भूल गए,
0: आज हम खुश कहे बहुत खुश हो गए हैं।
1: अच्छा भुलाए,
0: पूछियो ना कहे,
1: हाँ अब हम
0: पूछ, भुलाए की बात नहीं है,
1: नहीं
0: अब बात करते पूछो के हम कहे तो खुश हो गए,
1: आप बात करते करते भुलाए गई रही हो, तो
0: वो कहते हम खुश नहीं हुए हैं, बात कुछ दूसरे है ना।
1: अच्छा तो बताओ ना, तो खुशी के कारण का है,
0: तनी सोच लियो, आप थोड़ा मेहनत कर लो कि हम खुश काहे हो गए, वैसे तो आए रहे तब नहीं कह रहे ना हम खुश हैं, है नहीं, बाद में कैसी मतलब ऐसा कुछ होगा कि हम खुश,
1: शायद कुछ गठरी में लेके आई हुई हो और का,
0: नहीं गठरी तो लेपे करे हैं,
1: तो मैं कुछ
0: गठरी से खोल भी बहन, अब माँ से कहा निकारे है, श्रोता आप लोग परेशान हुए, आपों को बताई थी मास्क कहा, लेकिन पहले सखी से पूछ ली कि ये हमरे मन के बात जान जाती, ये
1: अच्छा।
0: मारे पूछी थे इनसे कि
1: तो अब जरूर कोई, अब कोई जैसे गर्मी में होए वाला कोई बीमारी के कुछ नुस्खा लाए हो और बताई हो कि जिससे और लोगन में यहाँ राहत मिले, कि जिससे और लोगन में यहाँ राहत मिले, सुकून।

0: नहीं तो ऐसा करे कि हमेशा हम ऐसे कुछ याद करे लगे हमारे सखी गीत संगीत बजाए दे। ठीक है कोई बना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पहले से शुरुआत है माँ। अच्छा, है ऐसे गीत संगीत और भी सुनावा जाए, कैसे अतः गर्म है सखी, है नी बतवा लगा बतवा लगा, लेकिन कुछ आलस भी शरीर का आवत है, लेकिन गीत संगीत सुनो ना तो कुछ एनर्जी आ जाता है, कुछ ताकत आ जाता है।
1: तो मतलब कुछ आज ऐसा लगा था ना घाम थोड़ा कम हुआ है गीत सुन के।
0: अच्छा गीत सुन के अते दिन एफएम में गीत ना बजाई ना कोई सुना रहा है,
1: पानी बरस जाए तो बहुत मजा आए।
0: हाँ, ये बात तो है सकी कि समस्या बढ़त जात है और पानी बरसत नहीं है, और पानी ना बरसे के कारण तापक्रम एकदम बढ़त जात है,
1: चला जात है।
0: और जिसके कारण से सकी ना कई रोगन के जो समस्या हो लाग है आजकल, जो गर्मी से एकदम जिसके पसीना भी ना आवत रहा, उसके खलखल एकदम पसीना भी आवत है। और सकभर तो आप लोग पानी के मात्रा एकदम प्रयोग करा जाए, पानी ज्यादा पिया जाए, और पानी युक्त वाला कोई भी खाना है फल फूल होगा जरूर सेवन करा जाए। और ज़्यादातर संकेत का होते कि आजकल जो पसीना और गर्म के कारण से शरीर में कई मेर के खुजलाहट छाला लाल लाल हो जाते हैं, अंधौरी आवे लागत है, ऐसे कई कारण है जो कि समस्या बनत जाता है। और ये समस्या तो है ये है, ये तो हम लोग के जाना जाते हैं कि और जत्ते छाला हम लोग के सूखा रही उतने समस्या हुई के मारे हम लोग पानी के मात्रा एकदम भरपूर मात्रा में सेवन करा जाए। और दूसर बात है सखी ना कि इस गर्म से और पानी के समस्या से पानी दूषित रहा था या कीटाणु युक्त रहा था जो उसके कारण से हम लोगों का सबसे बड़ा घातक जो गर्मी में ज्यादा लागत है एक कुल डायरिया कहा जाता है। और ये की सहित है जो गर्म में डायरिया बहुत समस्या हो जाता है,
1: डायरिया कहा
0: हाँ।
1: है,
0: अभी वाला। हाँ ये डायरिया में कहा हो जाता है कि हम लोगों के लूज मोशन जैसे कहना है पेट मरोड़ा पेट पिराब और एकदम पतला टॉयलेट हो भाने, तो ये सब कारण से हम लोग के कमजोरी पन आ जाते हैं, ना कुछ खाए मन होते ना पेक मन होते और हम लोगों का समस्या ज्यादा हो जाता है,
1: ज्यादा हो जाते हैं उल्टी दस्त वगैरह।
0: हाँ ये सब समस्या हो जाते
1: हैं, कमजोरी ज्यादा आ जाते हैं, पानी के कमी भी हो जाते हैं,
0: पानी की कमी है, सलाइन पानी चढ़ाओ एक परत है। लेकिन समय में अगर आपको समस्या भवा है तो समय में आप डॉक्टर के पास जावा जाए, सलाह लिया जाए और अपने आपके सही समय में इलाज करावा जाए। और उससे पहले हम लोगों का इससे बचे खातिर का ऐसा कहा जाता है वो के आज हम लोग जानकारी बतावा जी है नी। तो हमारे गठरी में सखी आज डायरिया के बारे में है, तो आप कहा जाता है गठरी लेके आई हुई हो सखी, तो गठरी हम खोल के पहले से छांट के इके मारे कि अभी मौसम अनुसार हम लोगों का कुछ बचे खातिर भी सर सलाह तो छलफल करे जरूरी भी है,
1: जरूरी भी है। और हमका
0: पानी तो ना बरसा सका जाते है, पानी तो प्रकृति के ऊपर है, फिर भी उससे बचे खातिर,
1: उससे बचे खातिर जब तक पानी ना बरसते। और पानी भी बरस से बरस भी जाते है ना सखी, तब पर भी जब घाम निकलत है तब वो भी सर्द गरम
0: हद से ज्यादा फिर गर्म होला था,
1: लेकिन और हैजा पकड़े के भी समस्या हो जाते
0: है। हाँ लेकिन अभी सखी चारों तरफ खेतन में बहुत जना बोरिंग से या समस्या कहाँ कहाँ से दूर दूर से 4 किलोमीटर से पानी की व्यवस्था करके खेत में जो बियार बोत है सहित वो तो देखा भी जाता है समस्या कि सारा खेत सुखान है और ऊपर से बियाड़ कतिर तो मेहनत से बोत है। लेकिन अब वहाँ पानी के मात्रा बियाड़ में भी पानी की मात्रा कहाँ से कैसे कब तक डली है प्रयोग करी है, फिर उसके बाद जब जैसे तैयार हुए का फिर हम लोग का बैठावक भी पड़ा, तो अगर पानी ना बरसा तो बहुत बड़े समस्या है समस्या। और पानी बरस जाए तो बढ़िया भी रहा, लेकिन जत्ते पानी ना बरसी उतने हम लोगों का और तापक्रम के वजह से गर्मी की वजह से रोगन के कई प्रकार के रोगे आवे लगे हैं। और देखा जाता है इसे सखी सुना जाता है कत्ते जगह सांपन के न्यूज आवे लागे हैं नी, हर जगह सांप और घातक सांप जहरीला सांप भी निकले लागे हैं बाहर, जबकि जमीन में तापक्रम नीचे ठंड रहा था तो सांप कुछ अंदर बैठत हैं, लेकिन अब तापक्रम के वजह से वो लोग भी बाहर निकल के भागे लगे हैं
1: गर्म की वजह से।
0: हाँ तो सखी अब हम लोग तो आज यही बातचीत करा जाए, श्रोता ध्यान से सुना जाए और आप लोग भी सरसल्ला जरूर दिया जाए, आप लोग के भी सरसल्ला के खातिर हम लोग एकदम हाथ गोड़ कान खोले बैठ रहा जाते है ना,
1: अपेक्षा भी किया जाते आप लोगों के सलाह सुझाव के। और सखी अब जैसे प्रोग्राम कहाँ से आवा थे ये भी हम लोग जो है जानकारी कराया दिया जाए साथी लोगों का, कहे कि जो नए श्रोता साथी लोग हैं उन लोगों का ना पता हो, बाकी पुराने साथी लोगों का तो मालूम है ना।
0: हाँ तो बताए दिन जा कहे से ये तो हम भूल गए रहे भाई कि यहाँ जो एफएम खोला जाता है नवा साथी जैसे हमारे श्रोता खोला गा तो ये का बतवात है कौन चीज हो के जानकारी और कहाँ से आवत है, जैसे सुना गा आप लोगों का सुनक फिर मन लाग तो फिर ये कौन कहाँ से कौन जगह से आवत है इका जानकारी लेक तो जरूरी रहता तो सखी बताए दिन जाए।
1: हाँ तो साथी ये प्रोग्राम आप लोग जो है कार्यक्रम घर अंगना 1 बजे से 3 बजे तक सुना जाते अपने ही प्रेस स्टेशन रेडियो केसर एफएम 94 MHz से।
0: हाँ
1: और ये प्रोग्राम जो है वीडियो हम लोग जो है केसर एफएम के आईडी है

0: फेसबुक आईडी है उमा जो है पोस्ट करा जाते हैं, हाँ. और हम लोग अपने व्यक्तिगत आईडीज भी फेसबुक से पोस्ट भी किया जाते हैं.
1: हाँ, जितने हम लोग शेयर करा जाते हैं प्रचार प्रसार कतिर भी कि आप लोग का सक भर जल सुना जाए और इससे होए वाला प्रतिक्रिया, जैसे आप लोगों के अपने प्रिय अपने स्थानीय आवाज अवधि आवाज में ये रहा थे प्रोग्राम, तो अवधिवासी जितने आप लोग समझा जाते हैं गाँव घरन में जो समस्या है उनका, फिर हम लोग कैसे सुधार करा जाए, कुछ लापरवाही हो जाते जिससे परेशानी हो जाती, तो आप लोगों के गाँव के समस्या से लेके आवा जाते, फिर चर्चा करा जाते कि उजागर करे कतिर और संपूर्ण लोगों के काने में का खबर करे कतिर, कैसे उनके प्रवाह हो, कैसे सुना जाए, फिर से उनका कैसे याद आ जाए, एक एक कतिर हम लोग का प्रसारण करा जाते है. तो सखी अब यही बात पर कुछ फिर से,
0: तो सखी अब यही बात पर कुछ फिर से ठीक हाँ. है फिर और का चलो फिर
1: कुछ फिर से ठीक है. हाँ, तो ठीक है, चला जाएगी संगीत के तरफ, फिर सुनते रहा जी.
0: ठीक.

0: आज यहाँ कहाँ भटकत हो?
1: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
0: परेशान हो कोई बात नहीं है, प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर है प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेर के आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेर के आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
1: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
0: संपर्क नंबर है 98487916।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तीरे को संपूर्ण प्रीमियम फिरता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
3: सूर्य ज्योति लाइफ इंश्योरेंस, जीवन को लागी।
4: नेपालगंज का लागी सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श। गम्भीर मृगौला रोग, डायलिसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डीएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबीनबाट अपरेशन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजबाट आउनु भएको एमसीएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बाल रोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगंज। सम्पर्क फोन नम्बर 081530220 र 98145689। 081530220 र 98145689।
5: बीर डेंटल
6: नेपालगंज शहरमा संचालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
7: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
6: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
7: फोन नम्बर 081532375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगंजमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङको फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बीडीएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगंजमा।
6: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
8: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
9: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डारे, ना ही ठीक आ थे।
10: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
10: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सुर्खेत रोड आदर्श नगर नेपालगंज 10 बांके वन कार्यालय के नेरेन पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
11: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
12: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
11: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
12: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज 6 फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98-480-2697, 98-580-2397 और 98-014-83-697।
13: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
11: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
12: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो? पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
11: ए अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
12: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्य क्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
11: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
12: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।
14: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुलमा व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकायका लागि आवेदन खुला गरिएको छ।
15: हो, भर्ना खुल्यो। व्यवसाय, बैंकिङ, उद्यमशीलता, होटल व्यवस्थापन, वित्त, कानून, पर्यटन तथा कर्पोरेट नेतृत्व क्षेत्रमा भविष्य निर्माण गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
14: व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, होटल व्यवस्थापन, पर्यटन, वित्त, व्यवसाय गणित र सामान्य कानून,
15: विज्ञान संकाय, चिकित्सा इन्जिनियरिङ, प्रविधि अनुसन्धान, स्वास्थ्य विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि
14: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विज्ञान।
15: विद्यार्थीहरूले आफ्नो करियर लक्ष्य अनुसार गणित, जीव विज्ञान वा कम्प्युटर विज्ञान जस्ता विषय संयोजन छनोट गर्न पनि सक्नेछन्।
14: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड?
15: हो, सबै विषयमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरू, केस स्टडी तथा परियोजनामूलक अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण,
14: पूर्ण दिवसीय कक्षा सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता सिप विकास,
15: आधुनिक विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान तथा होटेल व्यवस्थापन प्रयोगशाला, उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कार्यशाला,
14: नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, MBBS, BHM, BITM, BBA, CA, MBS तथा अन्य व्यवस्थापन तथा विज्ञान क्षेत्रका लागि करियर परामर्श,
15: उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको सुविधा, अफिस खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म, कक्षा सञ्चालन 2083 असार 1 गतेदेखि। थप जानकारीका लागि
14: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल, पासाङ लामु रोड, नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081-532-607-530-602।

0: सखी।
1: हाँ सखी।
0: तो अब हम लोग फिर कार्यक्रम की तरफ जो बातचीत करा जा रहा है, तो बड़े लंबे समय से हम लोग गीत संगीत सुनते फिर आवागा है कार्यक्रम। तो श्रोता आप लोग जाना जाते कार्यक्रम घर अंगना हो, और घर अंगना में हम दोनों जना के जो नोकझोंक जो सुना जाते हैं, लेकिन उनके साथे साथे ध्यान दिया जाता हुई कि नोकझोंक में भी कोई ना कोई बात रहा था, कोई ना कोई चीज संकेत रहा था,
1: संदेश छिपा रहा था।
0: हाँ, अब जैसे हमरे दुई जना के बात रहा पे भूले वाली, तो भूले वाली बीमारी भी एक बीमारी होत है। हम लोग बहुत जना उम्र के साथे साथे कोई भी चीजें कहाँ सामान रखा है का है, तो ये कि बीमारी के रूप में भी हम लोगों का गैसे लागत है, इसे भी आप लोग चौकन्ना रहा जाए। कहे से दिमाग के जो हम लोगों के विकास हो चाहिए, वो विकास में कोई ना कोई समस्या आवे लगता है। तो ऐसे है गर्मी के मौसम में बैक्टीरिया जो हम लोगों के समस्या हो जाता है, बैक्टीरिया युक्त हो रहा था, जिसके कारण से कहा नहींगा है कि जिसका दस्त भी कहा जाता है, डायरिया का पतला लेटरिन हो लागत है, और आदमी परेशान हो जाता है, छोटे से लेके बड़े सबको परेशान रहा था। और ज़्यादातर जो बुजुर्ग रहा थे जिनके शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं ज़्यादा कम रहा था, उनका तो तुरंत फिर बहुत ही ज़्यादा कमजोरीपन आ जाता है।
1: हाँ, तो सखी हाँ। सुनो ना, अब इकट्ठा बता ही दो का
0: मैंने बात कहा है, आप ही बताइए।
1: बात ये है हाँ। कि अभी 2 बजे का टाइम चेक है।
0: अच्छा,
1: और 2 बजे तुरंत, तो आपके बात यही की।
0: अच्छा, तो ऐसा करो ना सखी, तुरंत 2:09 बजे आप थोड़ा देरी का 2 का रोक दो, बाद में बजे तो नहीं हो सकता है।
1: हो सकता है सखी, अगर ऐसे हुए तो फिर टाइम के मुताबिक काहे कोई चले,
0: ये बात है। हाँ। तो फिर ये चला जाए ना, तो हम लोग आपका अगर कुछ सुनावे कही हो, कुछ बात है तो हम छुपाए जाए। अब इतनी हाँ। देर पर तक तो हम लोग आए रहे
1: हाँ,
0: हम कला की तनी आप आलस करत हो थोड़ा।
1: आलस नहीं, अब समय का लेके पकड़ के बैठ नहीं सका जाता ना सखी।
0: अच्छा, तो समय का लेके पकड़ के आप न बैठो,
1: चलो
0: है नी, वैसे भी 3 बजे तक तो हम लोग का जाहिन का है नी, तो फिर चलो
1: चलो।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस्ट सामान, और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
5: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते हैं, तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाते है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
5: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437। नींद
6: सोचे भन्दा सस्तो मा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्नीचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
7: हरेक सामानको खरिदमा 1000-20000 सम्म छुट, 10-15 वर्ष सम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
6: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अगाडि।
7: सम्पर्क 9705118470।
6: सोफा हब नेपालगंज,
7: विश्वासमा नम्बर 1,
6: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।

0: it, bunny, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
3: सुनो, हुआं औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कह के तहे दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377।
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
4: नेपालगंज में अवस्थित नेपालगंज नेशनल हॉस्पिटल में आगामी असार 6 गते शनिवार का दिन मधुमेह, थायराइड तथा हार्मोन संबंधी रोग का विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिने भएको छ। हॉस्पिटल में बिरामीहरूको सेवा का लागि काठमाडौं को नेपाल मेडिसिटी अस्पताल को थायराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन बराल आउँदै हुनुहुन्छ। यो विशेष स्वास्थ्य शिविर में बिरामीहरूका लागि विभिन्न किसिम का गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ। यस अन्तर्गत मधुमेह अर्थात सुगर को सम्पूर्ण जाँच तथा उपचार, थायराइड रोग को परीक्षण र उपचार का साथ ही हार्मोन असन्तुलन सम्बन्धी समस्याहरूको निदान गरिने हस्पिटलले जनाएको छ। नगरपालिकाको सामुन्ने बीपी चोकमा अवस्थित यस अस्पतालमा मोटोपना र मेटाबोलिक समस्याको उपचार, महिलाहरूमा देखिने पीसीओएस तथा मासिक धर्म असन्तुलनको समस्या र पिट्युटरी एवं एड्रिनल लगायतका अन्य ग्रन्थि रोगहरूको विशेषज्ञ उपचार सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ।
6: थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 081536465 र 98482 80465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: घर अंगना
5: के

0: सकी कुछ आप बोलो और कुछ हम बोली हाँ। और सुना था हमारे श्रोता लोग और गीत भी वैसे बजावागा कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले
1: कब तक चुप रहे हैं।
0: हाँ चुप तो हम लोग बैठ नहीं सका जाता है ये बात तो भाई गीत संगीत साधु नहीं समझ पाए
1: तो चुप रहे अभी तक हम ना बाध्यता रहा जैसे विज्ञापन रहा है
0: हाँ,
1: ना गीत बजत रहा है तो उस वक्त मजबूरी रहा है चुप होए खातिर
0: हाँ तो मजबूरी रहा है चुप होए खातिर नहीं तो चुप हम लोग हो ही नहीं सके
1: नहीं सका जाते
0: बातें ना कहा जाके चुप रह सका जाते है। और सखी
1: हाँ सखी
0: तो चुप ना रहा जाए हम लोग
1: बिल्कुल बोलो कुछ बोलो
0: कुछ बोले का है गठरी तो इतना बड़ा हम लोग बांध के रखबे करे रहे हैं और ये चीज जो हम लोग आज बातचीत करा जाते है डायरिया के बारे में ये चीज हम लोग का मतलब प्रत्येक दिन ये समस्या बढ़ते जाते हैं और बढ़े के कारण हो कि ये तापमान जते तापमान तापक्रम बढ़त जाते हैं वत ही रोगन के घातक हम लोगों का संकेत मिलत जाते हैं तो कहा नहीं मैं सबसे ज़्यादा हम लोगों के जो बैक्टीरिया और वायरस रहा है जिसके कारण से गर्मी के मौसम में जते तापक्रम अधिक बढ़त है वत बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलत है और सबसे ज्यादा समस्या रहा था कि दूषित पानी और खाना के वजह से तो हम लोग का बचे कतिर कुछ उपाय तो अपने आप का भी अपनावे पड़ा तो ये कारण है जिसके कारण से हम लोग का ये जल्दी लागत है। तो दूषित खाना पानी जो है कि उसमें जैसे बासी खाना हम लोग खावा जाते हैं आजकल का होते एक दो घंटा सवेरे ताज़ा खाना दो तीन घंटा के बाद झार आवे लागत है तक गर्म रहा था
1: खराब हो जाता है खाना
0: ऐसे जैसे हम लोग फल फूल काट के रख दिया गा है नहीं बाद में खावा गा उमा भी बैक्टीरिया हो जाते है। फ्रीज में बहुत चीजें खाना हम लोग रखा जाते है उसका भी सेवन करा जाते है वो भी हम लोग के शरीर के खातिर घातक रहा
1: था। अब जैसे फ्रीज में जो रखा रहा था ठंडा को जैसे थोड़ा देर लिए खराब नहीं होते
0: हाँ लेकिन जो विटामिन रहा थे खाना के वो नहीं रह जाते ऐसे संक्रमण होने वाला बहुत से खतरा इसे बढ़त जाते है और ये सब कारण से हम लोगों का रोग घेर लेते है। और जैसे हम लोग बाहर के खाना जो खावा जाता है जैसे सड़क के किनारे पानी पूरी खावागा चाट खावागा जो खुला चीज के जो नाश्ता रहा थे ये अशुद्ध पानी पिए की वजह से संक्रमण हो जाता है। जैसे हम लोगों का अब एक ऐसी खावा पिया जाता है कड़ू लाग तो जो भी पानी है थोड़ा बहुत पी लिन जाता है तो जो हम लोग हमेशा फिल्टर पानी पियागा फिर उसके बाद खुला बाहर के पानी कहो के पियागा तो जी के कारण से एक तो पहले हम लोग फिल्टर पिया जाता है तो शरीर का होके आदत बन जाता है। अब अगर थोड़ा भी पानी कहीं बाहर या बिना फिल्टर के नल के पानी पी लियागा कहीं के तो तुरंत हम लोगों का असर कही जाता है। कात नहीं कोई चीज़ जैसे डॉक्टर दवाई खावा जाता है जहाँ दवाई खाई के कोनो दूसर दवाई खा ली जाते तुरंत ही कह दिन जाते कि नुकसान कह दीस तो ऐसे शरीर का जो चीज़ पहले से आदत पड़े लगा था वो चीज़ में दूसर चीज़ अगर हम लोग जन तन को प्रयोग करा जाता है तो वो शरीर का बेफायदा तुरंत लक्षण दिखावे लगा था। तो शरीर के पाचन शक्ति कतिर जैसे गर्मी के कारण पाचन शक्ति हम लोग के कमजोर हो जाते है कहे से एक तो अंदर से लागत नहीं है औड़ा लागे लागत है कि कता गर्म है कता गर्म है
1: गर्म की वजह से
0: हाँ। और फिर हम लोग पानी के मात्रा जैसे पानी कम पियागा और पानी शुद्ध पानी पिया जाए पानी ज़्यादा मात्रा में पिया जाए शरबत पिया जाए और नींबू पानी के भी प्रयोग करा जाए ये मौसम में पुदीना के जो बता वगैरह पुदीना में भी पानी प्रयोग करा जाए और भी चीज़
1: जैसे भी होते हैं
0: हाँ लस्सी जैसे घर में दही मथा जाता है तो दही के साथ जो मट्ठा कहा जाता है उसका भी पानी में मिलाई के आप नमक भूजा जीरा गबड़ के आप पी सका जाता है जो कि हम लोग का तापक्रम और लौ से बचा सकता है।
1: और सखी जैसे जो आम के जो होता है
0: पना
1: हाँ पना वो भी पिया जाए
0: हाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग गाँव घर में उसका अपने आप का बचाव करते प्रयोग कर सका जाता है। लेकिन शरीर के अगर तापक्रम बाहर से आवा गया है तो तुरंते आए के तुरंते पानी न पिया जाए दो तीन मिनट आप अपने आप का पहले ठंडा कर लिया जाए कैसे एकदम से गर्म घामे इतना तेज है तापक्रम इतना ज़्यादा है कि जैसे लगत है हम लोगों के शरीर में आग लगे तना जले लागत है। अब उस समय में आवा जाए तो एक दो मिनट पहले रुका जाए तब कपड़ा बदला जाए औते खन कपड़ा पंखा के नीचे ना बदला जाए कहे से पसीना में डायरेक्ट हम लोगों के हवा लागत है वो भी नुकसान करत है। तो पहले आप एक दो मिनट तक निश्चिंत बैठ जावा जाए उसके बाद तब आप कपड़ा चेंज करा जाए हाथ पैर धुला जाए और फिर पानी के सेवन करा जाए है नी घर के शुद्ध पानी नॉर्मल फ्रिज के पानी एकदम ठंडा आइस वाला पानी ना प्रयोग करा जाए कैसे शरीर के तापक्रम बाहर के तापक्रम और आइस वाला पानी हम लोगों का इसे सर्दी बुखार के तरफ ले जाता है।
1: हाँ और इमा जो है गर्मी के महीना में ताज़ा खाना खावा जाए है ना
0: सखी? हाँ सखी
1: बासी ओसी ना खावा जाए। अब जैसे अब आजकल का होता है ना सखी जैसे सुबह बनाए तो शाम के जैसे खराब भी होए लगा
0: हाँ,
1: है ना गर्मी की वजह से जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाए की वजह से तो यही बात है कि बासी वासी ना खावा जाए, ताजा खाना खावा जाए, शुद्ध पानी पिया जाए।
0: हाँ, ये सब चीजें तो
1: कटा फल जो है, खुला हुआ चीज ना खावा जाए।
0: हाँ, जैसे फल हो थे ना सखी, कोनो फल है काटा गया तो तुरंत काटा जाए, फ्रेश फल का काट के खाए। हाँ। जाए, लेकिन काट के उसका बाद में रखे खातिर न रखा जाए। कैसे खुला चीज जहाँ रखा रहा था वो बैक्टीरिया आ जाते हैं और फिर उसके जो विटामिन रहा था वो भी उड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों का एकदम ध्यान रखे चाहिए ई मौसम में डायरिया से बचे करते। और बहुत सी इसके कारण है, जैसे कहते हैं कि लक्षण रहा था, एक लक्षण का रहा था दिन में, मतलब दिन में तीन चार बार हम लोग जैसे हल्का दस्त पानी तना लेटरिंग आवे लगा था, दस्त आवे लगा था, पेट में बहुत जोर से दर्द हो लगा था, पेट है ना ऐठन रहा था, मरोड़ मरोड़ के पिरात है, ऐसे जी एकदम से मचलान करत है, ना उल्टी होत है और जैसे लगत है कि हाँ उल्टी हुई हुई, फिर कोई चीज़ खाए पे मन नहीं करत है। ऐसे में आदमी क्या करते हैं, पानी भी पेक छोड़ देते हैं जी, के लक्षण रहा था उल्टी, और उल्टी हो भी जाता है, ज़्यादा उल्टी हो लागत है, और उसके बाद शरीर में पानी के कमी हो जाता है, और शरीर में पानी कमी हुआ तो शरीर एकदम थकान तना लागत लागत है, और जैसे मूड पिराप एकदम ज़्यादा मूड पिरा ला था और ज़्यादा बुखार भी आला था, इके मेन डायरिया के लक्षण रहा था।
1: और एनर्जी भी खत्म तना लागत है,
0: एकदम लागत है, एकदम शरीर एकदम थका है और बुखार भी इतना तेज आता है, एक तो तापक्रम ऐसे भी ज़्यादा है, ऐसे में बुखार आवा तो और भी परेशानी लागे लागत है, एकदम से पसीना बुखार और मूड में एकदम जोर से दर्द, ये भी हम लोग का वही माँ हमारे लोग के पेट भी पिराए लगा था। तो ये सब डायरिया के एक लक्षण रहा थे।
1: तो ठीक है सखी, अब बात बत कही का यहीं विश्राम दिया जाए।
0: हाँ,
1: अब हम लोग विश्राम के तरफ चला जाए। इसके बाद
0: विश्राम राहत कहाँ है फिर?
1: विश्राम राहत का है ना, ये अभी हम लोग जो है विश्राम की तरफ चला जाइए।
0: अच्छा, विश्राम की तरफ चला जाए, जहाँ विश्राम है वहाँ चला जाता है।
1: विश्राम जो है रख दिया जाए। हाँ। आप पूछो, नाम पूछो, विश्राम कहाँ है?
0: अब इनका विश्राम के तरफ रख दिया जाए, विश्राम के तरफ चला जाए और विश्राम से हम लोग मिला जाए, कोई बात नहीं, आप चला जाए।
1: चला जाए फिर बाद में आराम से
0: विश्राम के सहित आवाज आए।
1: गाना सुनते सुनते।
0: अच्छा, गाना सुनते सुनते चलो फिर।
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको हुन्छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्, तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौं पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: के तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
4: दैनिक ₹197 ₹50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
5: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।
6: नेपालगञ्जमा अवस्थित नेपालगञ्ज नेसनल हस्पिटलमा आगामी असार 6 गते शनिबारका दिन मधुमेह, थाइराइड तथा हार्मोन सम्बन्धी रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिने भएको छ। हस्पिटलमा बिरामीहरूको सेवाका लागि काठमाडौँको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन बराल आउँदै हुनुहुन्छ। यो विशेष स्वास्थ्य शिविरमा बिरामीहरूका लागि विभिन्न किसिमका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ। यस अन्तर्गत मधुमेह अर्थात् सुगरको सम्पूर्ण जाँच तथा उपचार, थाइराइड रोगको परीक्षण र उपचारका साथै हार्मोन असन्तुलन सम्बन्धी समस्याहरूको निदान गरिने हस्पिटलले जनाएको छ। नगरपालिकाको सामुन्ने बिपी चोकमा अवस्थित यस अस्पतालमा मोटोपना र मेटाबोलिक समस्याको उपचार, महिलाहरूमा देखिने PCOS तथा मासिक धर्म असन्तुलनको समस्या र पिट्युटरी एवं एड्रिनल लगायतका अन्य ग्रन्थी रोगहरूको विशेषज्ञ उपचार सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ।
7: थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 081536465 र 98482680465।
8: Back to back. Back to back.
9: In this song.
8: On. Stay tuned.

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: Toilet Pony, yeah. Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840081380।
3: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
4: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
3: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ हैं शारीरिक अपांगता होए से भी बची सका जात है।
4: जानकारी रहक चाहिए। कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
5: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
6: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी

0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हरेक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-84-465।

0: हाँ सखी।
1: हाँ सखी,
0: तो अब जानकारी तो आप बहुत अच्छा कराए हो, है ना, डायरिया के बारे में। यहाँ अब बाकी साथी लोगों का भी पता होगी हुई है, आप ध्यान से जो है वो खाना पीना पे भी ध्यान दे हैं, है ना।
1: हाँ,
0: तो सब लोग तो देते हैं, ऐसी बात ना ही है, लेकिन जो लोग ना जाना था तो उन लोगों ने तो काफ़ी ध्यान दे हैं ये सब बातें पर। यहाँ साथी ये सब बात पर यहाँ ध्यान दिया जाए, काहे कि बहुत ही ज़रूरी बात है। और ये जो गर्मी से हम लोगों का बचाव के खातिर स्वास्थ्य के ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होते सर, सफाई खान पीन मा वगैरह वगैरह।
1: सही बात है, और सर सफाई तो एकदम ज़रूरी रहा था। और सबसे पहले तो हम लोग खाना खाए से पहले हाथ का साबुन पानी से बढ़िया धोबा जाए, और खाना खाए के बाद भी हाथ अच्छे से धोबे के चाहिए। कैसे हम लोग के शरीर में 24 घंटा पसीना के ऊ राहत है, अब पसीना राहत है, नमक राहत है, जैसे लागत नहीं है नमखर लागा करत है, ऐसे में कहते हाथ पैर हाथन से कई काम करा जाते हैं, कोई का सामान दिया गा लिया गा तो तुरंत जाए के ऊ हाथ से खाना ना खाए के चाहिए। कैसे हाथ में कई प्रकार के कीटाणु हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, तो पहले खाना खाए से पहले हम लोग का हाथ एकदम जरूरी है धोवे,
0: हाथ धो के तब खाना खावा जाए, कोई भी चीज खावा जाए तो हाथ धो के ही खावा जाए।
1: और जैसे हम लोग डायरिया से बचे खातिर घरेलू उपाय कुछ है जो कि अपने आप का हम लोग पहले शंका लागे अथवा अपने आप का परेशानी लागे तो हम लोग उस उपाय का थोड़ा बहुत अपनाई के अपने आप का बचाए भी सका जाता है। जैसे कि हम लोग के पास आजकल स्वास्थ्य चौकी में भी सब जगह जीवन जल मिलत है नहीं? अभी जीवन जल हम लोगों का वैसे भी अगर आपका तापक्रम ज्यादा बढ़ाता है तो पानी के साथ है, जैसे ग्लूकोज पानी है, तो ये सब चीजें हम लोग पानी में मिला के पहले से भी पी सका जाता है। ये क्या होता है कि पानी की मात्रा तो हम लोग ज्यादा प्रयोग करहीन परा उमा से ही थोड़ा एनर्जी हम लोगों का जो बॉडी में शरीर में फुर्तीलापन देते है और ताकत थोड़ा दे देते है, एक हमारे जीवन जल एकदम जरूरी रहता है, वैसे भी आप पी सका जाते है। उसके साथ साथ ग्लूकोज पानी भी हम लोग पी सका, जैसे मुँह सुखात नहीं सके कि कुछ काम कर लगो तनिया पानी पियो तो भून लागत है कि हम मुँह फिर सुखात है नहीं, तो ऐसे में शरीर का ग्लूकोज पानी एकदम फायदाजनक रहा।

0: बात है। और जैसे हम अभी मैं पिए खातिर कौन चीज़ पिया जाए जिससे हम लोग डायरिया से बच सका जाता है, जैसे नारियल पानी है, नारियल पानी के प्रयोग एकदम उचित रहा था ये माँ। और नींबू पानी अभी हम कहीं भी करे रहें तो नींबू पानी के साथ साथ घर में क्या करा जाता है कि हम लोग नमक नींबू और पानी का मिलाई के पी सका जाता है, ये भी फायदाजनक करत है। और पानी तो सफ़ा हो ही चाहिए और सफ़ा पानी में अधिक मात्रा में पानी पिए के एकदम जरूरी है। और जब खाना खावा जाए तो क्या होता है कि खाना आपका पसंद आवा, खाना एकदम ज़्यादा खा लिया गया वो नुकसान कही जाता है। कैसे शरीर के जो तापक्रम रहा था वो खाना पचाने में बड़ा समय लागत है, जिसके कारण से वो के बैक्टीरिया के कारण से या शरीर के तापक्रम के कारण से वो हम लोगों का बाहर निकाल देते एकदम उल्टी कर देते या फिर मसमसाए लागत है या खाना पचत नहीं है तो डायरिया हो जाता है। तो खाना हल्का कम खावा जाए और खाना खाए के समय में हम लोग का हमेशा सादा खाना खाए के चाहिए, सही तो और ज़्यादा खाना सादा खाए के चाहिए और सफ़ा खाना खाए के चाहिए। खाना खाए से पहले हाथ पैर धुले के चाहिए। और खाना में ज़्यादातर हल्का खाना का है, जैसे हम लोग दलिया कहा जाते हैं, खिचड़ी कहा जाते हैं, ये सब चीज़ें। और दही के प्रयोग ज़्यादा इसे करे के चाहिए हम लोग का खाना में, दही हम लोग का एकदम फायदाजनक कर रहा है।
1: हरा मिर्च हुआ, कागनी, नींबू हुआ,
0: ये सब चीज़ें। अब जाने वाला चीज़ें तो हमसे लोगों से ज़्यादा भी आप श्रोता लोग जाना जाते हैं, लेकिन क्या होते कि कोई चीज़ें क्या होते कि हम लोगों का ध्यान नहीं दिया जाता है ना हम लोग के पास।
1: सादा खाना के मतलब ऐसा की है ना कि जैसे ज़्यादा मिर्च मसाला वाला खाना ना खाए।
0: हाँ, जैसे मैं कहे भी है नहीं कि जैसे सखी की जैसे हम लोग कौन चीज़ ना खावा जाए। हाँ। ऐसे में जैसे तला भुना, जैसे पकौड़ी भवा, बरिया भवा, ये सब चीज़ें बादी चीज़ें जो इसे ना खाए चाहिए एकदम से। जैसे मान लो कोई चीज़ ऐसा खावा जाता जो हम लोग का शरीर का गैस्ट्रिक बना सकत है, गरिष्ठ कर सकत है, ऐसे चीज़न का अभी हम लोग खाना तनिक कम प्रयोग करा जाए। तला भुना, मसालादार और सबसे ज़्यादा तो चाय और कॉफ़ी, ये सब चीज़ें। और दूध से बना जो उत्पादन रहते सामान लोग जो मतलब खाए वाला चीज़ें, जैसे मान लो खीर है, दूध है और पनीर है, ये सब चीज़ें हम लोग अभी कम प्रयोग करा जाए। जब आपका संकेत भी लागत है कि डायरिया तना लागत है, आपके जो अभी संकेत हम लोग बताओ ना कर रहा है कि पेट मिरोर के पिरात है, बुखार आवा है अथवा उल्टी तना लागत है, ऐसे चीज़ में तो ये अत्ता चीज़ें तो और जल्दी तुरंत बंद कर देख चाहत है। और पानी एकदम पिए चाहत है, जीवन जल पानी जरूर पिया जाए, ग्लूकोज पानी पिया जाए, ये एकदम उपयोगी चीज़ें हैं।
1: हाँ सही बात है, और ग्लूकोज जरूर पिया जाए। तो सखी,
0: हाँ सखी,
1: अब सोचित कि एक प्यारा सा गीत के तरफ
0: तो पूछे बात ही नहीं है,
1: गीत के तरफ नहीं मतलब एक व्यापारिक विश्राम के तरफ चला जाए।
0: मतलब आप हमका नचा रही हूँ माँ कि पहले गीत के नाम लेके फिर व्यापारिक विश्राम के तरफ, तो ठीक है कोई बात नहीं है, व्यापारिक विश्राम करते फिर हम लोग गीत संगीत सुनते कार्यक्रम में फिर आवाज
1: है, ज्यादा लंबा नहीं है,
0: ठीक है चला जाए फिर।
1: ठीक,
2: नेपालगञ्जमा अवस्थित नेपालगञ्ज नेसनल हस्पिटलमा आगामी असार 6 गते शनिबारका दिन मधुमेह, थाइराइड तथा हार्मोन सम्बन्धी रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिने भएको छ। हस्पिटलमा बिरामीहरूको सेवाका लागि काठमाडौँको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन बराल आउँदै हुनुहुन्छ। यो विशेष स्वास्थ्य शिविरमा बिरामीहरूका लागि विभिन्न किसिमका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ। यस अन्तर्गत मधुमेह अर्थात् सुगरको सम्पूर्ण जाँच तथा उपचार, थाइराइड रोगको परीक्षण र उपचारका साथै हार्मोन असन्तुलन सम्बन्धी समस्याहरूको निदान गरिने हस्पिटलले जनाएको छ। नगरपालिकाको सामुन्ने बिपी चोकमा अवस्थित यस अस्पतालमा मोटोपना र मेटाबोलिक समस्याको उपचार, महिलाहरूमा देखिने पीसीओएस तथा मासिक धर्म असन्तुलनको समस्या र पिट्युटरी एवं एड्रिनल लगायतका अन्य ग्रन्थी रोगहरूको विशेषज्ञ उपचार सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ।
3: थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 081536465 र 98482804465।
4: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
5: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।
6: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
7: तपाईलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
6: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
7: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंक्चरिस्ट। एकुपंक्चर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथरोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
6: अनकल सेवाहरू:
7: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी, अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिशा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
8: डाक्टर भेट्ने समय: बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म।
7: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कुटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए, वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
3: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
2: विशेष सुविधा
3: अब हरेक इतवार के दोपहरे 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
4: देर न कीन जाए, आजे स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081 5 30 598।

0: सखी,
1: हाँ सखी,
0: अब जो हम लोग बातचीत करा कर रहा है, अब कल फिर मतलब कल आवाजी ना आवाजी, आवाजी तो हम लोग देखे एक हफ्ता बाद आवाजी, वैसे हाँ। तो आप तो आई हो, लेकिन ये प्रोग्राम घर अंगना लेके हम लोग एक हफ्ता बाद आवाजी अगले शनिचर के, तो गीत संगीत भी वही तना रहा है कि मतलब कब मिला जी, कब आवाजी, कब हनी, तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो जो हम लोग डायरिया के बातचीत करा गया है, हाँ। डायरिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी,
1: पानी
0: जो पानी यही थी रखा है,
1: पानी तो यही थी रखा, ठीक है, हम लोग हमेशा रखा जाते हैं,
0: रखा जाते हैं, लेकिन हाँ। आप भी इसका जरूर प्रयोग करा जी, एक हफ्ता तो हम नहीं हुए है नी,
1: पानी प्रयोग
0: नहीं, यही पानी नहीं खत्म हो जाए चाहिए, बार बार में भरे चाहिए पानी, और पानी आपके पेट के अंदर जाए चाहिए, बात ये है। और उसके साथ साथ जैसे और भी साथी लोगन का समस्या होत है, डायरिया का संकेत लागत है, पेट पिरात है, उल्टी हो इतना लागत है, तो ऐसे में जैसे बातचीत करा कर हम लोगों के जीवन जल के है नी, तो ऐसे यही है कि माँ नया है ना, नवजीवन, नवजीवन, जीवन जल, कोई भी नाम के हम लोग स्वास्थ्य चौकी में जावा जाता है, ये हम लोगों का फ्री में मिलत है, स्वास्थ्य चौकी, अपने नज़दीक स्वास्थ्य चौकी में जावा जाए, और अपने समस्या अनुसार इका जरूर लेके अपने पास रखा जाए, कहा से रात बिरात तबीयत खराब हो सकत है ना सकी, तो आप भी इका रखा जाए जरूर, है ना श्रोता, आप लोग भी जरूर रखा जाए, और जेब में रखा जाए, पर्स में रखा जाए, जहाँ समस्या लगे।
1: सकी इका जरूरी नहीं होते कि डायरिया हो तब भी पिया जाए ना,
0: वैसे भी पी सका जाता है, कैसे हम लोग पहले बातचीत करा कर है ना सकी, कि जैसे पानी की मात्रा कम भवा, तो पानी के साथ साथ ही हम लोगों का और भी एनर्जी अब शरीर में पावर देत है, हम लोगों का ये जो जलन है ना, तापक्रम है, उसे ही बचावत है, तो एक आप रखा जाए, ऐसे श्रोता आप लोग भी जरूर रखा जाए,
1: और साथ
0: हमारे पास और भी है,
1: ठीक है, ठीक
0: है ना,
1: हाँ, तो साथ ही आप लोग भी जो है प्रयोग करा जाए, जो हमारे सखी हमका दीन है, इका जरूरी नहीं होते कि आप डायरिया में ही पिया जाए, हर वक्त पिया जाए, क्योंकि पसीना हम लोगों के शरीर से जब निकलत है तो पानी की कमी हो जाते
0: हैं,
1: तो इके वजह से इके प्रयोग किया जाए जीवन जल की,
0: हाँ, तो यही कहते हैं, यही संदेश के साथ है, अब हम लोग विदा के समय भी आए गवा है, हाँ, और गीत संगीत जरूर सुनाए दिन जाए,
1: हाँ, देखिए टाइम मिली तो,
0: टाइम मिली तो, ये टाइम का रोके खातिर कोई उपाय श्रोता आप लोग भी बतावा जाए कि हम लोग टाइम का पकड़ सका जाए,
1: हफ्ते श्रोता साथी शायद ढूंढ के लेंगे इके कुछ बात। अच्छा तो सखी,
0: हाँ सखी,
1: बिल्कुल कार्यक्रम के अंत
0: तरफ आएगा, हाँ बस, तो अंत तरफ आएगा, तो आप लोग से हम लोग का छुटेक मन तो नहीं है श्रोता, लेकिन हम लोग आप लोग से छुटेक बात ध्यान, अगले हफ्ता नया विषय वस्तु के साथ फिर हम लोग उपस्थित हुई है, तब तक के खातिर आज आप लोग सुनागा डायरिया के बारे में, तो डायरिया हम लोग डॉक्टर तो न हुई, लेकिन फिर भी हम लोग अपने घरेलू उपाय अनुसार कैसे बचा जाए, का का प्रयोग करा जाए, का ना प्रयोग करा जाए, इका फिर से चर्चा में आप लोगों के समझ हम लोग चर्चा कीनगा है, आपका अब ये प्रोग्राम इस विषय आपका कस लाग, अपन प्रतिक्रिया हमारे लोगों के जैसे सखी अभी बता ही रहा है कि कृष्ण सार के फेसबुक के पेज से ये पोस्ट होते हैं, यूट्यूब में भी जात है, ऐसे हम लोग अपन जो हमारे लोगों के व्यक्तिगत आईडी है उससे हम लोग भी शेयर करा जाते हैं, कई साथी लोगों का टैग करा जाते हैं, तो ऐसे आप लोग जरूर कमेंट मैसेज अथवा जो कमेंट लाइक से जरूर हम लोगों का एक और भी भरपूर जानकारी बता सका जाता है, सर सलाह जरूर दिया जाए, तो आज के खातिर विशेष हम लोगों का संपूर्ण श्रोता अपने साथी लोगन का कार्यक्रम सुनागा साथ दिया गा एक एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब हम लोग सखी हम लोग का विदा लिया जाता है ना, तो हमारे सखी का पहले का कह चाहिए थे कि इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, प्राब्धिकमा भी है, और ये गीत संगीत से हम लोगों का और बीच में हम लोगों का मनोरंजन बढ़ावत है, दिमाग का फ्रेश रखत है, और गीत संगीत कहा से जब बतुआए लागो तो ज़्यादा बतुआ तो क्या होता है, बीच बीच में हम लोगों का गीत संगीत भी चाहत है,
1: हाँ,
0: तो जरूर आप लोगों का ये पसंद आवा हुई, तो यही कहते मेरे सखी का बहुत बहुत धन्यवाद है सखी, यही कहते हैं अब हम लोग विदा लिया जाए, अगले हफ्ते फिर मिला जाए यही रेडियो स्टेशन में रेडियो कृष्ण सार की तरफ से, तो हम सखी संध्या
1: और हम सखी चंदा,
0: नमस्कार
1: नमस्कार,
0: राम राम, राम, राम, राम, शुभ दिन।

0: मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: धोए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
2: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता करके तहे दिल हुआ जाए।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
4: Back to back. Back to back.
5: In this song.
4: On. Stay tuned.

0: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
2: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
3: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
4: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा
5: हजुर। कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
6: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डारे, नाई ठीक थे।
7: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ हैं, कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बाँके। वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
9: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला।

धोए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यड्डे मुस्तडोरो ताज हेरो त पुरवा
5: उहट हेर बुढिया बर्खाक समय फेबा बखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसवा आयल कलश याब मुसवा खुस्ती सपवा फे आइ सकता
4: ओहो हो निका ठक्क समझनो घरक आन्दर पादा झफास फे बाहर से कत्ता कत्ता हिलबा काट पना रह
5: हां असी करी हेर बुढिया ओसिन हो कलश काल मिट्टी ना हो टेला रोटी पकाक बासी खाई दूसरा असल परिवार मने मिलकर सर सफाई कर भी दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन कर भी तो नहीं हुई
4: हुई था हो बुढ़वा असिन डाला मदर ध्यान घास फोहर झफास भी था उमा सांप नुख बैठल रह सकता ना
5: वह और सेटा कलक हो छाई समीरा छावा विवेक दुओ मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ढंग ढंग घास काटी कालिक लानल काटे फे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर फे सांप मुस्कु छू फे पैठनी सेकना मेर का चपट डार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा फुल से सांप अहिना त ओस्तहा कम हो जाई त
4: काल शनिश्चर फे हो बिहान का फुर्सत फे बा
6: साप बर्खा छाकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैठ यी मौसममा आपन बस्यारामा पानी पैठना फिला कोर्से सुक्खा ठाउँका खोजीमा हुक्रा बाहिर निस्कठ
7: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्ना क्रममा फे साप मानव बस्ती लग्घ आइसक्ठ
8: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगक उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाएक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक जैठा
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: यो कृष्णसार FM
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज।
2: Extreme energy drink. Time check. अहिले ठीक 8 बजेको छ।
3: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.
4: अब सुन्नुहोस् श्री स्टिल्स रेडियो कथा भाग 2। शर्माजीको परिवार सबै डराएका हुन्छन्, तर त्यति ठूलो भूकम्प आएर हल्लाएको त्यो घरलाई केही हुँदैन। यसरी नै दिन महिना वर्ष बित्दै जान्छ, अनि एक दिन फेरि अचानक ठूलो भूकम्प आएर त्यो श्री FE550D बनाएको शर्माजीको घरलाई झन् धेरै हल्लाउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्, अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
1: यो कृष्णसार FM
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज।
5: सापनका कटाई से हुइसेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध आम संचार अन्तर्क्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश।
6: नमस्कार, सर्पदंश से हुइसेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध जनचेतना जगेना उद्देश्य लेख अन्तर्क्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन सन्देशमा अपनः स्वागत बा। मै पुष्पा
7: वो मई एकराज। आज कार्यक्रमको दोस्रा पैदा आज हाम्रो सापनको डोसाइमा से बोचकलाक आफ्नो घर आन्जर पान्जर सफाई गर्न महत्व का कर बा कना विषयमा सम्वाद गर्ने बाँकी।
6: सापनको डसाइमा से बच आफ्न घर आन्जर पान्जर सरसफाई गर्नक महत्व का कर बा वो कसिक सरसफाई कर सेक्जिठा कना विषयमा हमन सर्पदंश विज्ञ मधेश प्रदेश जनकपुर हस्पिटलमा कार्यरत डाक्टर जामुन सिंह जानकारी देनेबाट।
8: हाम्रो घरको वरिपरि अलिकति सकिन्छ भने अलिक चिप्लै बनाऊ, चिप्लोमा सर्पहरू त्यति जाँदैन, उक्लिँदैन, हिँड्न पनि सर्पलाई चिप्लोमा गाह्रो हुन्छ, होइन, उनीहरू जान पनि खोज्दैन। उज्यालो भयो भने झन् सर्पहरू भाग्छ उज्यालोबाट, त्यही भएर हामीले राति एउटा बत्ती बाल्ने गर्छौँ। प्रायः जसो त्यस्तो ठाउँहरू छ भने बत्ती बालेर राख्यो भने सर्पहरू अलिकति लाइटबाट उज्यालोबाट टाढै भाग्न खोज्छ।
7: आफ्न घर आन्जर पान्जर सरसफाई निकर्न से वा कर निसक्न से हमन कसिन सर्पदंशक जोखिम उठा कना विषयमा जानकारी दिन बिन्दु ओ हुङ्कमा रगबटको एक दोस्रा भाग फेरि हाम्रो सुनबी।
9: नठु काका, यहाँ सुनि त।
10: हजुर बिन्दु नानी, रही न
9: काका, आपी गरै चा सपवा यहाँ काका राय थाहा बाप नहन।
10: आहा, थाहा नि गोट
9: काजे कलसे काका, आजकल बर्खक समय बा, गसो बर्खा दिनमा साफ सुक्खा ठाउँमा बैसना मन परैत। यी मौसममा हुङ्कनक बैसना बिलामा पानी बैसना हुँदा पर्छ, सुक्खा ठाउँ खोजीमा बाहर निक्लट।
11: ओ आहार खोज्ना क्रममा जस्ता कि मुस मुर्गी जसिन खानाका खोजी गर्न बेलामा फे साप मानव बस्तीका लगाइसेक्छ।
6: चलन चल्ती बोलीमा सापनका कटाई कैगिलासी फे हाम्रो कार्यक्रम जीवन सन्देशमा यी हन सापनका डसाई ओ सर्वदंश कैख सम्बोधन गर्वी।
7: सापनका ढिउर जसिन प्रजाति हुँ मरिन हानि निकर्दा मेरो जुरठ ढिउर सापनका प्रजातिमा बिल्कुल बिस्नी रटन हुक्र याटर आहार आन आफ्न शरीरले लटपटाक श्वास अवरोध कै खमर्छ वा आहार आन जमिनमा टाप खमर्छ वा जिटिहरि लट। कुछ सापनको प्रजाति मुहमरान विशेष मेरो ग्रन्थि बसे रस निक्लै छ जेले आहार आन लट्यास बनेन मोइना हो पसिनामा मद्दत पुगेठन्।
6: साप डन्डुरो सुक्खा ठाउँमा बैठ्न मन परेठ, बर्खा छ्याक समयमा आफ्न बासस्थानमा पानी बैठ्न हुला पर्से सुक्खा ठाउँ खोजीमा हिग्र बाहार निक्लठ। मुस लखरिल्या मुर्गी जसिन आहार खोजिकना क्रममा फे साँप मानव बस्ती लख लख आइसेप्ठ।
7: बर्खा छ्याक अर्थात् साँप बाहिर निस्कन मुसम्म आफ्न घर आन्जर पान्जर सरसफाई गर्न से सर्वप्रथम से बच्चा सिर्जिठा। आफ्न घरक आन्जर पान्जर रहल ढ्याङ घाँस काट ख फोहोर मैला व्यवस्थापन कै ख साँपनको डसाइमा से बच्चा सिर्जिठा। याद गरी साँप अस्ने ढ्याङ घाँस फोहोर बनुवार रहन ठाउँमा तथा आहार खोजीमा अनाज धरल ठाउँमा नुख बैठक रह सक्छ।
6: आफ्न घर आन्जर पान्जर सरसफाईको महत्व विषयमा सहभागी श्रोता हुँकन प्रतिक्रिया सुनि। हाम्रा मेरमेरक जिल्ला कुछ श्रोता सहभागी हुँकन मनसुन वा बर्खा छ्याकमा आफ्न घर आन्जर पान्जर कै फेरा सरसफाई गर्थी ओ का गर्थी कैख पुछ्ल बाटी।
12: मोर नाम बासमती थारू हो। सरपंच से बसने हमरन घर वटी पर सफा कहीना जरिया जप्ट साफ कहीना इटक टुकड़ा ठुपारली वो सब एक ठाव में व्यवस्था कहना दूर ठाव में और जो मौसम के बिलर हट जन पुन के चबट के सफा कहीना।
13: मोर नाम देवीराम चौधरी हो। सपोन से बस एक हमने घर वरीपरी सफा करे पट एक नंबर में दोसर में घर आंगन वरीपरी सब सफा रख के उपकरण विभिन्न किसिम का औषधी छरे पट झार उखारे पट घास पात नाई रखे देखे पट
14: कालठी थारू साफ रहना वाला बढ़िया से ओकर घर बढ़िया से घोटेल कैले रहो सफा रखले रहो रोंडर वोंडर रही तो टुबुंडे झापले रहो बढ़िया से सफा घोटेल कैले रहो साफ गोजा नया आवे कीड़ा फटिंगे नया आवे रात के सूर्य बाजी बदानी बढ़िया से लगा ले।
15: मोना संचु कुमार थारू हो। सापन से बचना तो पहले शुरू मैंने व्यक्ति गुजरार चाहना सफा तरफ झाड़ सफा रही तो मैंने उतना ठाव ना रही तो आईना फिर मैंने कम रही।
16: मोर नाम पुष्पा चौधरी हो। सरपंच के तो कैसे बचे क्लाक अपन घर वरी परी सर सफाई रखे पड़त घरे में मुसवन के जौन बिल्ला रहा ठुका सब पुंडे पड़त और टॉयलेट के वरी परी सफा करे पड़त बाहर के बिजली है रात के बाहर देना ना बुटेना वो बाहर जब निकले लगभग तो टॉर्च लेके निकलना।
17: कालू राम चौधरी हो। सर्वप्रथम त अपन घर के वरीपरी सफा सुघर झनझंखर नै राख भइल सब घर सफा रह परल मुख्य काह कलसे सापन के बचक लागि रात बिराट के व्यवस्था गुजरात के आवश्यकता प्रथा करना परल लाइट वाइट भी परल।
18: मोर नाम सुकिया थारू। अपन घर के वरीपरी तो सफाई सर सफाई करे परल अपन घर में बिजली बिल रही तो अपने सफा करबो तो अपने घर खुर्सियान रही मनाई फिर खुर्सियान रहा और हमारे सर सफाई ना करा तो वरीपरी फोर रही तो हमने घर तो कचरा गंदा रही तो ऐसे तो साफ गोजर पेल ही तो सर सफाई करबो।
7: हमरा भक्कर सुनली अपन घर आंजर पाजर का सरसफाई के महत्व विषय में हमार श्रोता सहभागिन का विचार वहाँ उनका मध्य कुछ मन महीना में कमती में एक फेरा और कुछ मन 15 दिन में घर आंजर पांजर सरसफाई करना कर बटुल ओसियाँ का घर आंजर पांजर का फोहर व्यवस्थापन करना कर घर में रहल फंग तथा भूये में रहल बिला चपलना कर बाट फिर बटुल
6: बर्खा छैक में हमार घर आंजर पांजर घास चांख छपास बनसेक था कोक्ने धान कोदो लगायत का अनाज का बाली ले फिर घरक आंजर पांजर छपास बने लठा साँप ध्यांग खास फोहर का खुर्रा बनवारो का ठीक कटकौरा में नुक का बैठल रहसेक था।
7: और बात हमारे खाद्यान्न भंडारण कर ठाव मूस लकड़िया नुक का बैठल रहसेक था उसी ठाव में आहारा लियो से पाजी नाम से सात फिर अनाज रहना ठाव में आकर्षित था हमारा अनाज व खाद्यान्न भंडार कर बे मूस लकड़िया वो चिरै भाटो निसक नापेका भण्डारण गर पठा।
6: सापनका दसैँमा से बच आपन घर आन्जार पान्जार सरसफाई गर्नको महत्व का करबा ओ कसिक सरसफाई गर सेक्दी ठाकना विषयमा मधेस प्रदेश जनकपुर हस्पिटलमा कार्यरत डाक्टर जामुन सिंह से बातचित गर्लबाटी।
19: नेपालमा विषा साँपबाट साँप एकठो प्राकृतिक जीव फिट याकर सँगसँग जैविक विविधतामा हिकनक आफ्नो स्थान बाटन लेकिन यहाँले करबेर खास गरी भित्री मधेश तराईको कुछ पहाडी क्षेत्र वा उच्च पहाडी क्षेत्रमा समेत सर्पदंशको घटना हुइटिरहल बा हाम्रा यहाँ कुछ ओसिन तथ्याङ बा याकर दसाई वा याकर क्षतिको विषयमा
8: सर्पदंशको बारेमा हाम्रो
20: देश सर्पदंशक हिसाबले हाम्रो देश बहुत पीडित हो अरू देशका तुलनामा हाम्रो ट्रपिकल रिजन गर्मी क्षेत्रमा पर्थी हाम्रो देशका आधा जनता मध्ये पहाडी सिलेका तराईसम्म हिर्विकलसे घन बस्ती यहीँ बा देशका दुई तिहाई जनता ट्रपिकल रिजन गर्मी क्षेत्रमा बैठ ट्रपिकल रिजन पहाड क्षेत्र भएपछि फे गर्मी जोबा ओ हाम्रो वो क्षेत्रमा बैठी ऊ वास्तवमा यो क्षेत्रमा सापनको कटाई अत्यधिक बा 50-60 हजार का आसपासमा सर्पदंश हुइलक सही बाटो ओ मृत्यु 3-4 हजार का आसपासमा हुइबा पाछक चरणमा क्रिटिकल केयरका फैलावट बढ्ती गिल्बा कोभिड पाछ भेन्टिलेटरका सेवा हाम्रोमा बा लगभग सक्कु प्रदेशमा बा ओ जनतनका पहुँचमा फेबा एकदम व्यस्त त रठा लेकिन कसौँ कहिलेसे फे व्यवस्था मिला जाइ लेकिन यहीमा सबसे भारी चुनौती का हो कलसे लगभग 80% मृत्यु अस्पताल पुग्नसे पहिले जो
8: अस्पताल पुग्नुभन्दा पहिला नै हुने गरेको छ।
19: करक आन्जर पाँजर समुदाय ओ समाजमा सरसफाई गर्नसे सर्पदंशसे बच्न उपाय हो यहाँ कसिका व्याख्या गर्दैबी
8: हामीले प्रिभेन्सन भन्छौँ 80% मृत्यु
20: हाम्रो यही होइन प्रिभेन्सन कठिन 80% मृत्यु अस्पताल पुग्न से पहिले उठा यही में अस्पताल का रोल 20% में आइल बस्ता अब यही है ना प्रिवेंटिव में गई से सांप कटबो नाकरण ये डगर गई से यही ले मृत्यु कम हुई याकर प्रिवेंटिव उपाय में सबसे प्रभावकारी उपाय कलक आपन घर आंजर पांजर काठी मीठा ठोठा बारकला ढरना गठ झूरदर्शन हमार समाज के बनावट घर के बनावट हेरबी कल से भंसक लग काठी कटकोरा कठ हमार तराई और भंसक संग जोर गिलठा वही में गोहू ढान का भूस पैरा चुईटा रहट अरहर का झखरा ढरल जे ही है न काठी के रूप में बेरा चाइट उस सब कुछ सापन का बसेरा भीतर अब खाना बनीना बा कल से काठी दिन का निकाल कर रखना जब खाना बना हुई तब रात का कहा कर निकाल देना दिन खट अजार रखा दिन खा निकाल रख लसे रात खजाई नहीं पड़ी सकभर असीन गुठा काठी धरना घर खाना बनना ठाव से वो लड़कन पहुंचे दूर ही बनना हो कल से सांप हमारे घर लगा आई नहीं सके कहीं वो डुआसर बाट सर सफाई आपन घर आंदर पंदर से जिठा कल से नीप खन चिकटार बनाई काकर कल से जिलबिल हुई कल से सांप जिलबिल में न्यांगा नहीं सकता जिलबिल में न्यांगा नहीं सकना हुए कल से वो सिंह ठाव मजे ना मन भी नहीं पड़ेगा वो अजरार से सांप दूर ही बखता वो वर्षे रातिक समय में दिया बार दिया पड़ता सांप इना असर ठाव कल से रात का दिया बल रहा पठाओ असी कल से अजरार से सांप दूर ही रहा खोजता असह कर डुआसर बाट का हो कल से सर सफाई एकदम महत्वपूर्ण बात हो फोहर पटपराइल रहल से सफा कर रहल मजा हो खाटक तर भयावरिक सामान धरना लेकिन वहाँ काबा के खन कभी भी नहीं हरना सांप कब कहिया आई के ठा नहीं पा दे वो रात खन सुटल बेला बिस्तारा में या बिस्तारा में से उठना बेला गोर ले डाब जाए सकता ओसी खर डुआरी केवार पुरान घुटी जाए खाकर हुई सकता वही मन फंग पर सकता चपक कनी लगना हुई था उसी ठाव में से सांप छिर सकता वो घर के ऊपर छट रहा गाँव में केकरो खर या खपरक छानी रहन खपरक घर रहन एल्वेस्टर या आजकल यूबीबीएस के बनाए घर फे बाटन याकर ऊपर रहल फंग है ना माटी टूंग दिया चाहे सांप अपनी बिला नहीं बने बिला बनवे मूस हुई वो बिला है ना माटी बंद कह दिए पड़ा भिटा और खपरक बीच में जो खाली ठाव रहा वही ना कच्चा माटी ले टूम गया से सांप आई नहीं सकता मूस तो हमन सब कुछ हम हैरानी करती रहा मूस दिन का दिन बिला बनेती रहा यही ना हमारा कमती में फिर अठवार में एक जो हैरा पड़ा बिला बंद कर पड़ा मही है ना याद बा हमार बाबा हमकर लट्ठी ले ठठा कर बिला कहाँ कहाँ बा कई कपट्टा लगाई तो बिला बुझ दिया असी कर सक दे याकर संग सुटने वाला मच्छरदानी लगा कर सुट पड़ा सुटना वाला मच्छरदानी लगे से डोरा फैला बा कालाजार से बचे सिख दिन हुई मलेरिया से बचे सिख दिन हुई मच्छरदानी सर्पदंश से बचे था यदि सप को मेयर से रात का घर में आगे कल से बिस्तार में जाए नहीं सकी खास कई कर लड़कन रातिक समय में गरी चाशा कटना कर था काजे कल से हमको बिस्तार में नुकल रहा रात का कबूकाल ऊपर से गिरे सेक था तो रही से खट्टे मजे चिवरे भी सेक था असीन में मच्छरदानी बहुत सहयोग कर सकत सांप अपनी बिला बनवा नहीं हुई डगर पहले से कि नेंगना हुई डगरी में डांचे कुछ रुआकल कल से हमको घूम जी था वो डगर नेंगबो फिर कट वो दूरी से घूम जी था रात का उठा भी हमारा टॉर्च लाइट का थी टॉर्च लाइट आपन थी ढलरना चाहिए रात का उठा भी पहले टॉर्च लाइट बरना वो बाहर का सेकल से ठोपरी बजना कर रसी ठोपरी बदल रही हमको सतर्क भी था वो डुआसर रोड घूम जी था वो टॉर्च लाइट बाहर खा ना खाटक टर ग्वारा ढली कल से सांप हमन निकट ना हो सापन कुछ नहीं चले से पहले काट नहीं था हमारे सापन के पूछी वह डेही में हमार ग्वारा पड़ कल से वह कौन कट्ठा लुगा बा वही में सप बा वही है ना टाइम गिल कल से मही है ना मारकला बाट कना समझ कर सांप कटना कर था नहीं तो खाटक टर रहल सांप निकट गेन होकर भाग खोज था हुकर हमन रगैट नहीं था जब हमको डेही में छू गिलन कल से हुकन महीना मारकला बा कना लगठन वो बेला मन काटकला रह वो वर्षे असी के बचता उपाय मिले से बहुत मजा हुई था वो डुआसर बाट कहा बा कि हमार तराई वर गम्बूट मिलट वो घलना बान पड़ाई पड़ल रात के बाहर जाए बेर चरफी दुर्बा कल से बूट घाल के जाए वो बूट भीतर सांप फिर हसे बूट घलना से पहले झराझुर पार कर हेर कर केल घलना चाहिए मई बूटक भीतर बिछी जुट्टा भीतर बिछी देख लो बाटू वो से जुट्टा मजा से झरा कर उल्टा बिल्टा पार कर भीतर हेर कर केल घलना चाहिए असी के घर से सर्पदंश से बच जाए डगरी में न्यांगा फिर जुट्टा घाल कर न्यांगा पड़ता वो ठूल लुगा घाल पड़ता रात का न्यांगा फिर पैंट जीन्स असें घाल कर न्यांगा से कुछ सुरक्षित हुई सक जाए सर्पदंश से बचना उपाय कलक यह सको
2: सर्पदंश बचने होने प्रयास भने कोई नहीं
21: और डस्टर बाट लट्ठीले ठक ठक पर्ना टर्च लाइट बढ्ना
2: हाम्रो साथी नै हो त्यसलाई त साथी बनाए हुन्छ आजकल मोबाइलको जमाना आएपछि मान्छेले
20: टर्च लाइट त हाम्रो सङ्ग्रह जो हो आजकल मोबाइलको जमानामा मनी टर्च लाइट बाह्र छरलबाट मोबाइलको टर्च लाइट बल्ल सिफे हुइठा तर यही मोटा इल्युमेन्स निरहट हाँसले बढ्न टर्च जट्टा सहकार अजार मोबाइलको टर्च निरहट उहिले ढ्युर अजार डेठा बरा हजार फक्ठा मोबाइलको टर्च टनी कम अजार डेठा ओ टिक्ना पनि टिकट ओभरसे टर्च ढर्ना बान परिन एकदम जरुरी बा ओ बिस्तारमै से उठ्ने बेला डरिना बाट नै हो बिस्तार बसी एकचोट उठ फेर बिस्तारमा जाइ भेर सुटे भेर बिस्तार उठा ख सिरन त नझराली ओहना बिछिना झराई असी कर्लसी सफाफी हुना हुइल ओ निष्फिक्र भे भजिना हुइल ओसी ख मच्छरदानी के प्रयोग फेर एकदम करी सुत्न बेला एकदम बजिठाए महिना बिना मच्छरदानी सुट पर्कलसी एकदम डर लठा अपनो कहलबाट एकदम मजा हो लट्ठीले फक फक पर्न टर्च लाइट बर्न हुक्रो कानले त नै सुन्त लेकिन लट्ठी भुइँमा ठोक्लसे भाइब्रेसन मिठा ऊ भाइब्रेसन साँप बहुत दूरसम्म थाहा पैठ जस्तो कि हाम्रो कौनो कठोमा ठोक्ली कलसे करिब 500 मिटर दूरसम्म सुन पर ओसिएख धरतीमा लट्ठी ठोक्लसे वाकर झन्का साँप थाहा पैठ हो हुक्रो आफ्नो आफ्नो सतर्क हुइठ ऊ डगर बदलका ग्वासहरू चल्दैछ
2: त्यसले गर्दा उनीहरू आफै सतर्क हुन्छ सर्भर पनि सतर्क हुन्छ बाटो छोड्छ उनीहरू
7: आफ्नो घर आन्जर पन्जर सरसफाई गर्न महत्त्व सरसफाई गर्न तरिका ओ ध्यान दिए पर्ना बाटक विषयमा हाम्रो सकुजान बुझाडेलक म सर्पदंश सम्बन्धी विज्ञ मध्य प्रदेश जनकपुर हस्पिटलमा कार्यरत डाक्टर जामुन सिंह प्रति हाम्रो आभारी बाटी
3: ओहट हेर बुढिया बर्खाक समय फेबा पखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसुवा आयल कलस आब मुसुवा खुस्ती सपुवा फे आइसक्था
4: ओहो हो निका ठ्याक्क सम्झनु घरक आन्जा पाजा झफास फे बाहर फे कत्रा कटा हिलबा काटा पर्ना रह
3: असी करी हेर बुढिया ओ सिन्हो कलसे काल मिट्टी न ओ टेला रोटी पकाक बासी खाई दोस्रा सर परिवार मन मिल्क सरसफाई करबी दोस्रा आन्जर पान्जर रहल फोहर का व्यवस्थापन करबी त नि हुई
4: हुई ठा हो बुढुवा असिन डाला मा त ध्यान घास फोहर झफास बिल ठाउ मा साप नुख बैठल रह सक्थना
3: ओहोर सेट कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तुओ मै मिल्क घरक आन्जर पान्जर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काठे फे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर फे साँप मुसकु चुके पैठनी सेकना मेरक चपट डार पड़ल दोसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई लसे साँप अहिना त ओस्तह कम हो जाइत
4: काल शनिश्चर फे हो बिहान क फुर्सत फे बा
22: साँप बर्खा छ्याकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैठ यी मौसममा आपन बस्यारामा पानी पैठना हुइला कोर्से सुक्खा ठाउँका खोजीमा हुक्रा बाहिर निस्कठ
23: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्ना क्रम फे साँप मानव बस्ती लग्घ आइसक्छ
24: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लगक उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सक्जिठा
25: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा हो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सँग बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनको सँगसँग विश्वभरिक रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लब हुकनसेट जनहितकला प्रस्तुत सन्देश
26: अत्रा बेला हाम्रो रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश सुन्तीबाटी
6: आज हाम्रा सापनका दसैँमसे बच आफन घर आन्जर पान्जर सरसफाई गर्न महत्त्व का करबा ओ कसीक सरसफाई गर सेक्जिठा कना विषयमा बातचित गर्तीबाटी अबसम्म हाम्रा श्रोता सहभागी हुकनक विचार हो सर्पदंश सम्बन्धी विज्ञ डाक्टर जामुन सिंह से कर्लक बातचित सुनली
7: अत्रा बेला भर बिन्दु हुनकुमार भट्टकै दोस्रा पैठा सुन्न बेला भइबा सर्पदंश सम्बन्धी जनचेतना फैलिन अभियानमा सक्रिय बिन्दु हुनकुमार पहिला भागमा फेसबुक लाइभ मार्फत नेपालमा पाइने विषास ओ साँप सक्रिय हुन समेत विषयमा जानकारी गरिनुहुन
6: फेसबुक लाइभ ओरिटिकी हुनकुमारको मोबाइलमा नथुकाका घरमा सपवा डेक पर्लक म्यासेज अर्थात् सन्देश आइल रहन् राजीवको पडोसी नथुकाको घरमा सपवा आइलक कारण हुनकुमार ओ बिन्दु पत्ता लगही कि नाही नागेश नथुकाका घरमा जाख का करही ओ नठुकाको घरमा अब का गुइटी बाटन अब हाम्रो फेलागि बर्दियावर
27: नठुकाका नमस्कार
28: नमस्कार बजारु भैया
29: कहाँबाट सपुवा काका
28: उहाँ कटकोरमा बा सन्ध्या खाना बनाएकोलाई काठी देखे गइल रहँ का चाल करलस लागल अस्ति खेर्नु त करैचा सपुवा पो रह तन के नि काटन
29: अब यहाँ बनाए काका भैया देव बजार में से तो सब बात ठीक हो जाए था हे ऐसी सांप ता कतरा पकड़ गई कतरा
28: वो एक वर्ष तो फोन कहीं का अपने हाथ बोले लेखो गाऊं
29: नहीं अपने वो क्या हैरी रंजी मैं सपोर्ट निकालूं है वो लट्ठी लानी था
28: ठीक ली
29: कवर चिरों कवर लट्ठी ने ठोक ठाक पड़ने से हिली था ते ग्रेसा जात का सपो एकदम चिम्मन रखा जब तक चलेने से फिर खान नहीं पाया दिमाग पल रखा ये क्या बा बाहर आता वन नहीं हो यार आका यार हो यार यार
28: वो निकल निकल निकल
29: निकल ये निकल इतना ग्रेसा सपा वो वो वो हम कुमार बिंदु गच्चब का समय मारो था टूरा अब भक्खर ठेक गई ग्रेसा सपा काटिक कटकोरा मशीन निकल गई
0: ये वो नहीं बजारू मजा से पकड़ो हो ना नकी काटी फे
29: ये बाजार हुआ सब वो निकट टीन का बिंदु सात तमो संगरिया पे हुई था ना घर ऐसा संगरिया
1: ये बाजार उप चाहे जिसका ना बांध बहुत कपूनी जाई ना हमलान
29: क्या करना था उनको मार संगरिया एक बार का चोला हो आशी खुशी जीना था हो ब्यूटू बेस्टी करो मैं ये घर ऐसा हाँ गांव से दूर ले जाकर छोड़ दें
28: ना ही कहाँ छोड़ना बात बटवाई थी बाजारू यहाँ तो मारे पड़ल ना कि और जन फे काटी सकी
29: कहाँ मरना बात बटवाई थी बुधराम काका एक फिट जीना अधिकार बातस जे जैसी का हमार जीना अधिकार बा निमारा वे जी वही थे यहाँ वोटी दूर ले जा कर छोड़ के
0: वो तो बुधराम काका बतानो कनक एकदम सही बात हो छे साहब तो अपना मन फायदा करना जात भी थी
28: कसी फायदा करता जे
0: कसी को भी काका अपना खेती पाती करती वनी बानी नाली नुकसानी के करता कहीं तो मोचने भी तो वो ये साफ मोचन खा देता अपना बात नानी नी बचन कही था फिर साफ तो अपना खतरा महसूस भी ला सीखे था कटना तो होली ना कि कहाँ कटा था
1: वह था वह वर्ष यह कारण ले कर बिल फिर सांपन मारा नहीं हुई
22: बिंदु हेरोटा नथुका का घर आंसर पांसर कटरा ढेर छपास बा बरका बरका घास दोसर वहाँ बनवार
0: वह तो कहाँ उनकुमार यह कारण ले कर बिल सांप आई थी क्या घर में ना
1: होनी वह तो फिर पर व्यवस्थापन कर पड़ल अनि घास पात सब काटा पड़ल वो खार पड़ल कई खा समझाई
0: वही ठुम कुमार नट्ठू काका यहाँ सुनी था
28: हजूर बिंदु नानी कही ना
0: काका आप ही गरे जा सब वा यहाँ काका राय था बाप न हन
28: हाँ था नहीं होता
0: आज ये कल सिका काका आजकल बरखक समय बा वो सब बरखा दिन में साफ सुखा था मो बचना मन पड़े थे ये मौसम में हम कनक बेचना बिला में पानी बेचना हुई लगोर से सूखा ठाव खोजी में बाहर निकल था
1: हाँ वो आहार खोजना क्रम में जस्ता की मूस मुर्गी जसिन खाना का खोजी करना बेला में फिर सांप मानव बस्ती का लगा ही सकता
28: ये तर मुआर घर एक आंजर पांजर का करे आई हुई था
0: का कर की ना का का मेरी तो कटरा झंग झंगेर बात वही में फिर ये फोर का व्यवस्थापन फिर निकल लगी अनी तो सांप वो या तो हुई लगा हो
1: होता अनि असिकार अलसेट साँप नुक्का बस्ना सजिलो पिना फिल्जे हो कि नहीं कही त
28: उ त हो न सपा नुक्का बैसलबा कैख ठा निपाख लगे गैले से त कटैया त हुलका हुना
0: वो मुर्सी अपन घरक आजर पाजर बराबराय घास काटदारी फोन मैला व्यवस्थापन करी काजे कि घरक आजर पाजर खाली वो सफा ढरल से साँप नुकना ठाउ नि पैट हो नि ऐट बुझली ना
28: बुझलु नानी मैं काल बिहानी ही घास झपास सक्कु काटदारन वर्फे व्यवस्थापन करम
1: बैठा काका आप हमरा लागी थे तरा काल चाहिँ निबिसरा का सबु सफा कर बिना
28: बनी भैया
0: बैठु ना हम कुमार अपना बैग के पास
1: आप बैठ सेकला से फिर पूछा पड़ता तो बिंदु
0: वो तो ना
1: ली जाए ना
0: बैठा हम कुमार वो अपना बाव आठ हमारा लग दूसरो खट अपना छोटी जन में सफा कटना पनी वो
1: होता ई बाव हाथ हमार डोमिनिया सपवा काटल रह आम हिंदा अग्नि मेटल हो
0: आ हो ना तर अपना घाटक ठक के बीच में काटल कर से हुई पश्चिम डाक खट के सुई ना
1: आ ना आप डाक खट के सुहाई थी काम कतरा हंसे ठगा
0: नहीं जट्टी से कटू का हूं कुमार कसम नहीं ये फोन कर ये अरुणा को कर टिका हेलो अरुणा हजुर का हूं सुखरा मना सपवा काटल हूं ए ए लेव लेव निहट बटाओ हमरा आ गई दी हम कुमार हमन तो कारीली जा जाए पर ना हुई सुखरा मन सप्पा कटन हूँ
1: ए वो नहीं लेनी मारे जाए
7: नछुक काठी कटकोरामा गरिचा सपन कर रह हमरा पैरा सुकल घास काठी असिया ढरबर सकल सम घर सित एक दू ढरपना बाट बिन्दु अभं कुमार हमन सिखिला सापन मार निवेट साप बानी खाए ना मूस लकड़िया जैसी जिरवा खाए लिख किसान सहयोग करना हो वातावरण संतुलन कर मदद कर बाट फिर आजोक सर्पन मसी सिखली
24: संग संग बिन्दु अभं कुमार सर्पदंश मसे बज घर आंजर पांजर लठ्यांग घास ब्याल ब्याल म काट का हटेना फोहर का उचित व्यवस्थापन कर अन्न भंडारण में सापन आकर्षित हुई निधि एक लाख हम्र कर पर्ना बाट फे सिखेल बाट और कार्यक्रम में फे बिन्दु अभं कुमार बीच का बातचीत में फे सर्पदंश संबंधी आकुर लौ जानकारी पक्क फे बाजेने बाट सहभागी श्रोता ये विषय वस्तु हो छलफलकसँग रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश का आज प्रस्तुति यी दोस्रा भाग बसे मै पुष्पा
7: ओ मै एकराज बिरामामाथि और अङ्कमा सापनको डसाइमसी बस्ना उपाय विषयमा और लौ जानकारी लेख फेनी छोबाटी आजक लाग बिदाटी नमस्ते
24: यी रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान अतिथि हुक्र बटुलक उहाँ हुकनक निजी विचार मान्जैने बा ओ नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजना तर्फ से अभिव्यक्ति हुइलक आधिकारिक विचार गैख माननी हुई
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत
9: हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त
10: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली
9: हो र त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त
10: एउटै छाता मुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंक्चर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बाथ रोग ढाड दुख्ने मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ
9: अनकल सेवाहरू
10: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ प्याथोलोजी भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे ईसीजी कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत दिसा पिसाब खकार थाइराइड बायोप्सी कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म
10: सम्पर्क फोन नम्बर 081533719 98480222 र 98605222
12: आमैनी सामान खरिद गर्ने यति लामो लिस्ट सर र हेर्दा नेपालगञ्जदेखि लखनऊसम्म धाउनु पर्ला कि क्या हो
13: हैन बहिनी यसमा आत्तिनु पर्ने केही छैन अब यी सबै ब्रान्डेड कम्पनीको सक्कली र उचित मूल्यको सामान एउटै विशाल बजार मारुति मेगा मार्टमा पाइन्छ यो रुपैडिया बजारको सब्जी मण्डीको छेउमा रहेको मारुति मेगा मार्ट हो बहिनी त्यहाँ शादी विवाहको सबै सामान सौन्दर्य प्रसाधन सुटिङ सर्टिङ साडी अन्डर गार्मेन्ट्स होम एप्लायन्सेस ड्राई फ्रुट्स विद्युतीय उपकरणहरू आर्टिफिसियल ज्वेलरी किचन तथा टोयलेटहरूको सामान आदि सबै सामग्रीहरू एकै छाना मुनि पाइन्छ
12: स्थान मारुति मेगा मार्ट सब्जी मण्डी अगाडि गल्लीमा नानपारा रोड रुपैडिहा बजार मोबाइल नम्बर 98699064581
14: नेपालगञ्जका लागि सुपर स्पेशियालिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श गम्भीर मृगौला रोग, डायलिसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्तथैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबीनबाट अपरेसन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बालरोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-220 र 98-41-586-979। 081-530-220 र 98-41-586-979।
2: अया, कान दुखेर हैरान भइरहेछ, के गर्ने, कहाँ जाने होला?
3: बहिनी, किन चिन्ता लिनुहुन्छ? बिर्नोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा हुँदाहुँदै हाम्रा सेवाहरू नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ तथा कान स्वास्थ्य प्राविधिकद्वारा दैनिक रूपमा कानको परीक्षण जाँच गर्नुका साथै अपरेसन गरिन्छ। कान नसुन्ने बिरामीहरूको लागि कान सुन्ने विभिन्न मेसिनहरू सहुलियत शुल्कमा उपलब्ध गराइन्छ। कानमा पर्न गएका विभिन्न प्रकारका बाहिरी वस्तुहरू, कानको कानेगुजी निकाल्ने, कानेगुजी तथा अन्य कानका फोहोर वस्तुहरूको सरसफाई समेत गरिन्छ। लामो समयसम्म कान पाकिरहेमा वा पिप आइरहेमा कान चिलाउने, कान दुख्ने, कान कराउने, कान जम्प हुने, कानबाट तरल पदार्थ निस्किने, कान कम सुन्ने बिरामीहरूको कान परीक्षण गर्नुका साथै प्राथमिक कान उपचार तथा आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइन्छ।
8: साथै प्रयोगशालाको पनि व्यवस्था रहेको छ। अस्पताल शनिबार दिउँसो 1 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ।
3: विस्तृत जानकारीको लागि ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा, फुलचेक्रा 5, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-244, 98-580-81-244।
15: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
16: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
17: एसईई परीक्षा उत्तीर्ण सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाईका साथै उज्जवल भविष्यको कामना सहित यस आदर्श मावि नेपालगञ्जमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विज्ञान तथा व्यवस्थापन संकायमा कक्षा 11 नयाँ भर्ना खुलेको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकमा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सीमित सिटका लागि भर्ना खुलेकोले छिट्टो सम्पर्क गर्न हुन पनि अनुरोध गर्दछौ।
18: हाम्रा विशेषताहरू: भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न, यातायातको सुविधा, उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, एसी क्लासरूम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू। प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ
17: दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा साइन्स अन्तर्गत बायो र फिजिकल ग्रुप र म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स, होटेल म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडिज र फाइनान्स अध्यापन गराइने।
18: सम्पर्क आदर्श माध्यमिक विद्यालय, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081-537-994, 98-587-994, 98-588-195 र 98-588-197।
17: पश्चिम नेपालकै शैक्षिक केन्द्र नेपालगञ्जमा तपाईँका सपनाहरूलाई साकार पार्ने प्रतिष्ठित नाम हो मोडर्न पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल। अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराइने यस विद्यालयमा कक्षा 11 विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुन संकायमा भर्ना खुलिसकेको छ।
18: गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट मार्गदर्शनका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 081-531-359, 98-582-666 र 98-584-488।
17: मोडर्न पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल, शीतलनगर, नेपालगञ्ज, बाँके।
4: आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु नै साँचो आत्मविश्वास हो। त्यसैले त नेपाल परिवार नियोजन संघ बाँके शाखा विगत लामो समयदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित छ।
6: हामी कहाँ पूर्ण गोपनीयताका साथ सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजनका साधन, पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको परीक्षण तथा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध छन्।
4: विशेष सुविधा, अब प्रत्येक आइतबार दिउँसो 3-5 बजेसम्म स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्देश आचार्यद्वारा विशेष परामर्श र उपचार पनि पाउनुहुनेछ।
6: ढिला नगर्नुहोस्, आजै स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श लिनुहोस्। ठेगाना: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 9, रामलीला रोड, नापी शाखा अगाडि।
4: फोन नम्बर 081-530-398।
19: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
20: हरेक सामानको खरिदमा 1,000-20,000 छुट, 10-15 वर्षसम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि।
19: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ। स्थान: राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अगाडि।
20: सम्पर्क: 97051148 70।
19: सोफा हब नेपालगञ्ज,
20: विश्वासमा नम्बर 1,
19: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
21: यो कृष्ण सार एफएम
23: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्यक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके

0: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
1: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
0: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
1: एउटै छाता मुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
0: अनकल सेवाहरू:
1: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिसा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
2: डाक्टर भेट्ने समय: बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म।
1: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
3: बीर डेंटल
4: नेपालगंज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
5: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
4: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
5: फोन नम्बर 081-532-375।
6: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
7: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागि।
8: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
9: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिक्स, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिये और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जाना थियो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
9: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-1000।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
3: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
2: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
3: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
2: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
3: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते?
2: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
3: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
2: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है। इके साथ हैं फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
4: आज है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है। स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए। हाँ दीदिया,
5: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज। संपर्क नंबर 98680 73 70 और 98195 0 67 82।
6: यो कृष्ण सार FM 94
7: मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्ती के तेज़।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी